यार ने दिल विच वसना ओ हमें अपना बना हाथ यारी का बना तुझे कसम हमारे प्यार दी।

0: तुमच्या मुलाचं स्वप्न आयआयटी मध्ये जाण्याचं आहे की डॉक्टर बनण्याचं?
1: भारतातील नामांकित जेईई आणि नीट कोचिंग ब्रँड पेस आता आपल्या नाशिक मध्ये,
2: आणि तेही अशोक स्तंभ आणि नाशिक रोड येथे.
1: जोशीज इंजिनिअरिंग क्लासेसचा प्रदीर्घ अनुभव
2: आणि पेसचे दर्जेदार मार्गदर्शन
1: म्हणजे यशाच्या दिशेने पडणारे खात्रीशीर पाऊल. जेईई, नीट, सीईटी आणि फाउंडेशनच्या उत्कृष्ट तयारीसाठी जोशीज क्लासेस घेऊन आले आहे पेस आयआयटी एंड मेडिकल.
2: आता नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार पेसची उत्तम तयारी जोशीज क्लासेसच्या अतूट विश्वासासोबत.
1: ऍडमिशन आणि अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा 9146773425.
3: रसिक हो नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज. आणि मी आहे आरजे श्रद्धा, अर्थातच वारली चित्रकलेवरची श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. रसिक हो विनोबा म्हणे ह्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, गेल्या काही भागापासून आपण जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसोबतच नाशिक महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांशी सुद्धा गप्पा मारतो आहोत. मनपाच्या शाळांमध्ये सुद्धा विनोबा हे ऍप अतिशय सक्रियरित्या वापरलं जातं आहे. तर ह्या अनुषंगाने आज माझ्याशी गप्पा मारायला खास जोडल्या गेलेल्या आहेत मनपा उर्दू शाळा क्रमांक 84 वडाळागाव नाशिक या ठिकाणाहून शेख तबस्सुम अब्दुल कादीर मॅडम. तर आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारूया आणि त्यांचा प्रवास जाणून घेऊया. बहुत बहुत स्वागत है मॅडम आपका विनोबा म्हणे इस कार्यक्रम. जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर बातचीत करते हुए. सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उर्दू स्कूल में पढ़ाती है और आज आपको विनोबा की तरफ से पोस्ट ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिला है, इसलिए आज हम लोग मिल पाए हैं, बातचीत कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बचपन से सोचा था कि मैं आगे जाके बड़ी होके टीचर बनूंगी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी, किस तरह से रहा आपका बचपन से लेके आज तक का सफर?
4: ओके, हाँ मैडम, मेरा नाम अब्दुल कादिर शेख है. मैं इस वक्त महानगर पालिका स्कूल नंबर 84 वडाला गाँव में टीचर हूँ. मुझे टीचर बनने की तरगीब जो है सबसे पहले मेरे अम्मी और अब्बा ने दी. उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने और अपने ख्वाब पूरे करने का हौसला दिया और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बचपन से इतना कुछ करके बताऊं और टीचर बनूं. शादी के बाद फिर मेरे शौहर और ससुराल वाले ने भी मेरा बहुत साथ दिया और पढ़ने का हौसला दिया. मेरे टीचर की सिर्फ नौकरी बल्कि बच्चों की जिंदगी संवारने और इन्हें खूबसूरत बनाने का जरिया है, मेरा ये ख्वाब था. और इसी के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी
3: जी,
4: कि इल्म की रोशनी से हर अंधेरा मिटाना है. इल्म की रोशनी से हर अंधेरा मिटाना है, हर बच्चे को आगे बढ़ाते जाना है.
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा शेर सुन के. जी, आप भी कुछ ऐसे शेरो शायरी लिखती है?
4: हाँ मैडम, मुझे थोड़ा शौक है शेर शायरी लिखने का और कुछ भी ऐसा जो जहन में आए तो अपने अल्फाज में थोड़े बयान कर देती हूँ.
3: क्या बात है?
4: आप ये आप

0: शाला शर्मा कठावन की स्कूल में थी, वहां पर से फिर मैं 132 देवलाली का वहां पर 20 साल मैंने स्कूल में थी वहां पर, और उसके बाद अभी मैं 84 नंबर वडाला गांव में हूँ।
1: अच्छा,
0: 30 साल हो चुके हैं।
1: तो कितने स्टैंडर्ड के बच्चे हैं आपके पास?
0: मेरे पास 5वीं 6वीं 7वीं तीनों क्लास का लेती हूँ मैं, उर्दू सब्जेक्ट और समाज लोग मतलब सोशल समाज।
1: अच्छा, तो आपके स्कूल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं?
0: हमारे स्कूल में दिवाली मनाया जाता है, रक्षाबंधन, और ये 15 अगस्त, हमें आजादी, हमें जमहूरिया, ये सब 26 जनवरी, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
0: अभी पिछले बार ईद मिलाद का त्योहार मनाया, उसके पहले रक्षाबंधन मनाया, मतलब जो धर्म के सब मनाते हैं। अच्छा। हम लोग आदिवासी दिन भी मनाते, बच्चे सब तैयार होके आते हैं, आदिवासी बनते हैं और वो भी मनाते हैं हम।
1: क्या बात है, मतलब सिर्फ कहने को उर्दू शाला है, लेकिन आप सभी रिलीजन का उतना ही मान सम्मान रखती है और त्योहार मनाती
0: है। हमारे पास उसकी वीडियो है, फोटो है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे मैं स्कूल के हर फोटो पेस्ट करती हूँ।
1: जी जी जी, अभी इस साल जैसे ही स्कूल चालू हुआ उसी वक्त शायद आप लोगों को विनोबा के बारे में पता चला है ना?
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो जैसे
0: हाँ, मुझे विनोबा के बारे में जून महीने में पता चला
1: जी।
0: और बाद में हमारे सविता मैडम जो है ना, विनोबा की मैडम सविता, तो वो आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे को सिखाया, इसको ऐसा करना है, बड़े प्यार से और एकदम मतलब जरा भी टेंशन नहीं, एकदम इससे समझा दिए तो मेरे समझ में आ गए और मैं इसे जब से ही काम करना शुरू कर दिया उसने।
1: तो जैसे आप जी जी
0: एक शेर बोलना चाहूंगी विनोबा ऐप के लिए।
1: जी जी,
0: कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और ऐप हो तो विनोबा जैसा।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: ये खुद मैंने बनाई हूँ, मतलब ऐसा मैं खुद से शायरी भी थोड़ी थोड़ी लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ लिखने की।
1: जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
0: शुक्रिया मैडम, शुक्रिया।
1: जी जी, तो जैसे ही आपको पता चला कि विनोबा करके एक ऐप है और उसके ऊपर हम लोग वीडियोस डाल सकते हैं, तो आपने बच्चों के साथ कैसी तैयारी करी, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपने वीडियोस निकाले और किस तरह से आपने वो पोस्ट करे, उसके बारे में क्या कहेंगी?
0: मैं विनोबा ऐप के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की तालीमी सरगर्मी और स्थिति पर काम किया, बच्चों में वर्कशीट, प्रैक्टिस और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, एक्टिविटी जो थी उनको सीखने के लिए कोशिश की, उनको पोयम याद करने कहा गया, उनको कविता याद करने को, उसके बाद में कथा याद करने को, बच्चे शौक से याद करने लगे और उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा भी नेट पे, इंटरनेट पे फोटो आएगा, वीडियो आएगा, तो खुशी खुशी करने लगे सब बच्चे।
1: अच्छा, तो आपने कितने वीडियोस डाले होंगे आज तक विनोबा पे?
0: मैंने बहुत सारे डाली, काउंट नहीं की, जैसे भी होते हैं ना बनते हैं वीडियो, बच्चों को अच्छी तैयारी, तो फिर रोजाना 1-2-3 ऐसे वीडियो डालती हूँ मैं।
1: जी,
0: एक शेर है, नए अंदाज से तालीम का चिराग जलता है, नए अंदाज से तालीम का चिराग जलता है, हर बच्चे को सीखने का मौका मिलता है।
1: क्या बात है, आज तो आपने पूरी शेरो शायरी की बारिश ही कर डाली, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ, मुझे शौक है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करती
1: हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विनोबा बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है?
0: हाँ, विनोबा बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने में बहुत मददगार है, इसके जरिए जो टीचर है वर्कशीट, वीडियो और हफ्ते वाली मनसूबाबंदी करके सरगर्मियाँ, एक्टिविटी और प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई को आसानी और दिलचस्पी से बताया जा सकता है, खास तौर पर बच्चे कहानी सुनाना, नज़म और बहुत सारी सरगर्मियाँ सीखने की सलाहियत मिलती है। उसके लिए मैं हम किसी लोग के लिए शेयर करना चाहूंगी कि हम रहनुमा है, हमें रास्ता दिखाना

0: होगा, हम रहनुमा है, हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहबर है, हमारे साथ जमाना होगा। पास है अपने हथौड़े इल्म, पास है अपने हथौड़े इल्म, पत्थरों को तराश कर हीरा बनाना होगा।
1: वाह, आप जितने भी शेर बोल रही है ना वो एकदम से सिचुएशन को फिट बैठ रहे।
0: हाँ, तो वही सोचकर मैं बोल रही हूँ कि हमें ज्यादा बोलने शेर और शायरी में अपनी बात बयान कर सकूं।
1: जी जी, मेरे हर सवाल के ऊपर, हर सिचुएशन के ऊपर आपके पास कोई ना कोई शेर है, और वो सभी एक से बढ़कर एक है।
0: माशाल्लाह, शुक्रिया।
1: जी जी, तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर टीचर्स को मोटिवेशन मिलने के लिए विनोबा ऐप आपको कुछ हेल्प करता है?
0: हाँ, बहुत सारी हेल्प करता है। विनोबा ऐप से मेरे बच्चों की पढ़ाई को एकदम आसान बनाया। बच्चे भी सुनकर याद करते हैं, पूरे ध्यान से किताबी बातें बताने से बच्चों को नहीं याद नहीं रहता है, लेकिन वो वीडियो और ये बताने से बच्चों के जहन में बात आ जाती है। तो बच्चों को भी कुछ करना है, ग्रुप एक्टिविटीज ये वो, तो उनमें बोलने की खुद एतमादी पैदा होती है। तो विनोबा है टीचर के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत मददगार है।
1: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जिस दिन आपको पता चला कि आपको अवार्ड मिला है, उस दिन आपकी खुशी किस तरह से थी?
0: मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और इतनी खुशियाँ और इतनी मुबारकबाद और सबकी तरफ से इतनी दुआएं आने लगी, मैं बता नहीं सकती इतनी खुशी में। और मैंने उससे ये खुशी खुशी में एक शेर लिख डाला।
1: अच्छा, सुनाइए।
0: आपकी दुआओं ने हमें खास बना दिया, आपकी दुआओं ने हमें खास बना दिया, आपकी मुबारकबाद ने दिल खुशियों से भर दिया। शुक्रिया कहने को अल्फाज कम पड़े, शुक्रिया कहने को अल्फाज कम पड़े है, आप सभी ने अपना प्यार देकर दिल जीत लिया।
1: वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप तरक्की करो और ऐसे ही आप अवार्ड्स जीतती जाओ, यही मैं दुआ करूंगी।
0: वही ना, अच्छी बात है ये, मेरे तजुर्बे और विनोबा ने आसान और मौसर बना दिया, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं। मैं एक मेहनत करने वाली टीचर है और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा नई चीजें सीखने और अपनी तजुर्बे को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी और विनोबा ऐप का भी तालीम काम में इस्तेमाल करती हूँ। सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता, कोई भी उम्र हो, सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए।
0: शुक्रिया, शुक्रिया मन्ना।
1: जी जी, तो जाते जाते आप अपने सभी जो स्नेही हैं, जो आपके सहयोगी टीचर है, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगी क्या कि विनोबा ऐप यूज करना चाहिए, किस तरह से फायदेमंद है, इस तरह से कुछ आप उनको मैसेज देना चाहोगी?
0: जरूर जरूर, मैं अपने तमाम साथी टीचर से ये कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म ना दें, बल्कि इनमें सीखने की दिलचस्पी, खुद एतमादी पैदा करें। हर बच्चे में कोई ना खूबी है, कोई ना कोई टैलेंट है, इसे पहचान कर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कामयाबी हमारी कामयाबी है और हमारी कामयाबी देश की कामयाबी है। इसके लिए मैं एक शेर सब टीचर्स के लिए कहना चाहूंगी कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा।
1: क्या बात है, इतना अच्छा लिखती है आप, बहुत ही बढ़िया।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।
1: जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप हमसे बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित रही और इतनी अच्छी हमसे बातें करी और अपनी इतनी बेहतरीन शेरो शायरी सुनाई, इस सब के लिए मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया मैडम, शुक्रिया
1: जी,
0: थैंक यू।
1: तर मंडळी, विनोबा म्हणे ह्या कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याशी जोडल्या गेल्या होत्या। नाशिक महानगर पालिका उर्दू शाळा क्रमांक 84 वडाळा गाव नाशिक या ठिकाणाहून शेख तबसून अब्दुल कादिर मॅडम। कार्यक्रमात आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण तुम्ही ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।

0: हेलो
1: नमस्कार सर।
0: हाँ जी नमस्ते, योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी सर।
0: जी गाना सुनना है, फिल्म है जाबाज और गीत के बोल है तेरा साथ है कितना प्यारा।
1: ठीक है सर,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो, रेडियो विश्वास।
1: हेलो
0: हाँ बोलिए सर।
1: जी बहन प्रणाम।
0: प्रणाम सर, बोलिए।
1: प्रियंका श्री राम डेरा सरीला राठ मस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी
1: गीत सुनना चाहती बहन?
0: बोलिए सर, कौन सा गीत?
1: मूवी का नाम रहेगा राजा गीत के बोल।
0: राजा गीत के।
1: तुझे लगती गीत लगती तो दर्द मुझे होता है,
0: ओके ओके,
1: तड़के तो दिल ये मेरा रोता। जी
0: यस यस, धन्यवाद।
1: कुछ लाइनें कहेंगे बहन अगर इजाजत हो।
0: जी, कहिए।
1: गीत और गजल में शेरनिगार है नारियां, वक्त पड़ जाए तो तलवार है नारियां। हाथ में चूड़ी देखकर कमजोर ना समझो, क्योंकि देश को चलाने में आगे है नारियां।
0: बहुत बहुत बढ़िया सर,
1: जी बहन प्रणाम।
0: प्रणाम।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार सर।
1: हाँ जी नमस्ते, योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी सर
1: जी, गाना सुनना है, फिल्म है जाबाज और गीत के बोल है तेरा साथ है कितना प्यारा।
0: ठीक है सर,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो
1: हेलो मैडम
0: नमस्कार सर।
1: हाँ हेलो परमेश।
0: हो सर।
1: हाँ परमेश जैसी होती।
0: हो सांगा सर।
1: टीचर चुनाव बंदी के आणि गाण्याची चाल रंग भरे आकोशे रंग जोडा दे।
0: बरं ठीक आहे सर।
1: थँक्यू।

0: हेलो, रेडियो विश्वास।
1: हेलो
0: हाँ बोलिए सर। प्रणाम
1: जी बहन। प्रणाम।
0: सर, बोलिए।
1: प्रियंकाशी राम पडेरा सरी लराठ मस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी
1: गीत सुनना चाहती बहन?
0: बोलिए सर, कौन सा गीत?
1: मूवी का नाम रहेगा राजा गीत के बोल।
0: राजा गीत
1: तुझे
0: के?
1: लगती गीत के लगती तो दर्द मुझे होता है,
0: ओके ओके,
1: तड़के तो दिल ये मेरा रोता। जी
0: यस यस, धन्यवाद।
1: कुछ लाइनें कहेंगे बहन अगर इजाजत हो।
0: जी, कहिए।
1: गीत और गजल में शेरनिगार है नारियां, वक्त पड़ जाए तो तलवार है नारियां। हाथ में चूड़ी देखकर कमजोर ना समझो, क्योंकि देश को चलाने में आगे है नारियां।
0: बहुत बहुत बढ़िया सर,
1: जी बहन प्रणाम।
0: प्रणाम।

0: हमने तो सुना था कि ताश के पत्तों में चार दहले होते हैं।
1: हमें तो दो ही नजर आ रहे। कहा है आपका जीन साथी?
2: वो भी यही है।
1: तो सामने क्यों नहीं आ रहे?
2: उनका कहना है माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में, कैसा जमाना आया देखो कि आशिक खड़े हैं नकाब में।